0: শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে বন্দনা অনুষ্ঠানটি শুনিলে। আজিৰ বন্দনা অনুষ্ঠানটি সজোৱা হল ক্ৰমে কুসুম তালুকদাৰৰ কণ্ঠত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীত, নলিনী মহন্ত আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ নাম, নাৰায়ণ কলিতাৰ কণ্ঠৰ লোকগীত, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ টোকাৰী গীত আৰু কৃষ্ণা লহকৰ বৰদলৈৰ কণ্ঠৰ ভজনেৰে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই আকৰ্ষতা সিং। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और

0: कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution rates, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said, Ministry of Ayush has launched a Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyle across communities. The Prime Minister urged athletes from across the world to help spread awareness about yoga beyond the championship.
2: जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
1: Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health, and people-to-people ties. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IS officer, as advisor to the Prime Minister Narendra Modi. The Department of Personnel and Training informed that Mr. Kapoor's extended tenure in the Prime Minister's office takes effect on 10th of this month for a period of 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Neelkant Mishra as Executive Director, World Bank Headquarters, Washington, D.C. for a tenure of 3 years. The Department of Personnel and Training informed that the tenure of Parmeswaran Iyer has also been extended till the new incumbent assumes charge. The Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the decisions taken by the Monetary Policy Committee, MPC, this morning. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhashi Kashyap passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. He was 97. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as a Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. In his condolence message, Prime Minister Narendra Modi said that Dr. Kashyap was one of India's foremost constitutional scholars whose contributions to parliamentary and constitutional discourse enriched the society. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on 5th June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Programme to build awareness to save life on Earth. The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav and Minister of State Kirti Vardhan Singh will participate in a tree plantation program. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamegara Hockey Stadium in Japan today. And that is the end of this news bulletin.
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়ামৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু ডিআৰএম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি

0: গৰৈমাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ আচলপাৰা জিৰোৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান চলোৱা হয়। অভিযানকাৰী দলটোৱে অবৈধভাৱে মাছ মৰা কাৰ্যত জড়িত এজন লোককো আটক কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে নদীত মাছ ধৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকে। বিহালী সমজিলা প্ৰশাসন আৰু ৰঙাগড়া চাহ বাগিচাৰ উদ্যোগত কালি অবৈধ সুৰা নিবাৰণ আৰু প্ৰতিৰোধৰ বাবে সজাগতা সভাৰ লগতে ভিন্নমুখী জীৱিকাৰ কৰ্মশালা সন্দৰ্ভত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিহালী সমষ্টিত বহু লোকে অবৈধ সুৰাৰ বেপাৰ কৰি আহিছে। এই বেহা বন্ধ কৰি ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক অন্য জীৱিকাৰ পথ সন্দৰ্ভত বিশেষভাৱে অৱগত কৰোৱা হয়। অনুষ্ঠানত বিহালী সমজিলা আয়ুক্ত সবিতা কাকতি কোঁৱৰকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। ডিব্ৰুগড় জিলা সাংবাদিক সন্থা আৰু বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ যৌথ উদ্যোগত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 100 জোপা নাহৰৰ পুলি আৰু ফল মূলৰ গছৰ পুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে হৈ গ'ল। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
5: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
5: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना

0: चार दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन। पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है। प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and Constitutional Expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
5: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej and Sarigam GIDC, modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
4: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
6: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
4: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
6: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा

0: গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আপুনি আমালৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944। পুৱা প্ৰচাৰিত ফোন ইন অনুৰোধৰ গীতৰ অনুষ্ঠান সুৰধ্বনি আৰু সন্ধিয়া প্ৰচাৰিত সান্ধ্য আলাপ অনুষ্ঠানটিলৈ আলোচিত বিষয় সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত আদি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটি আজিয়ে টুকি থওক। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 6003166944।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাৰ পৰা হিন্দীত, 12:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
2: भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
5: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा।

0: कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसे पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. The Prime Minister will also inaugurate and dedicate projects worth around 1,340 crore rupees, including the new terminal building of Namo Airport and Namo Hospital. The Reserve Bank of India kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial year, announcing the second bi-monthly monetary policy for the current fiscal. RBI Governor Sanjay Malhotra today said the Monetary Policy Committee, MPC, has unanimously decided to retain short-term lending rate or repo rate at 5.25% with a neutral stance. RBI has lowered GDP growth projection to 6.6% from 6.9% earlier for the current fiscal. RBI also increased CPI inflation target to 5.1% from 4.6% for the current financial year.
3: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
2: the center

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। आज के प्रसारण में मैं अस्मिता आप सभी सैनिक भाइयों का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है मीडियम वेव की 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीरिंग फ्रीक्वेंसी के 1026 किलोहर्ट्स पर। आप हमारा कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप, एआईआर रेडियो ऐप पर भी सुन सकते हैं।

होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर वक्त रहेगा बंदगी के गीत और भजन का, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर सब रंग।

1:40 पर सुन पाएंगे तरन्नुम, दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 इस प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम गीतिका सुन पाएंगे। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सैनिक भाइयों, आइए अब शुरू करते हैं आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंगरक्षक से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। गीतकार है समीर और संगीत से सजाया है आनंद मिल ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आरजो से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है मीडियम वेव के 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी के 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आप हमारा कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप, एआईआर रेडियो ऐप पर भी सुन सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आज का गीत। आज का गीत हमने लिया है फिल्म ढाई अक्षर प्रेम से। गीत में आवाजें हैं अनुराधा पोरवाल और अभिषेक बच्चन की। गीतकार है समीर और संगीतकार है जतिन ललित।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है मीडियम वेव के 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी के 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आप हमारा कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप या आईआर रेडियो ऐप पर भी सुन सकते हैं। सैनी भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आइए आपको जानकारी दे दे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल भी हमारा प्रसारण शुरू होगा दिन के 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 12:30 पर आज का गीत। 12:38 पर वक्त रहेगा स्वर संगम का।

1:10 पर गुंजन, 1:40 पर सुन पाएंगे प्रादेशिक संगीत, दोपहर 2 बजे मिड न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 बजे प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम नजराना सुन पाएंगे।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। सैनिक भाइयों, आइए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन का। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौरवाल और साथियों की आवाजों में, फिल्म बाहर आने तक से। गीतकार है ताज दर ताज, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

बंदगी के गीत और भजन कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंकुश से। गीत को गाया है अशोक खोसला, मुरलीधरन और साथियों ने। गीतकार है अभिलाष और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशन कन्हैया फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार है इंदिवर, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लोफर से, मोहम्मद रफी और क्षमा कीजिए, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरगम से, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

बंदगी के गीत और भजन कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं लोफर फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आपने ये गीत सुना। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अमर प्रेम से। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है आरजे बर्मन।
1: आनंद बाबू, तुम्हें चुप क्यों? की दुख?
2: कोई भी दुख नहीं।
1: दुख है शाला, हम तो झूठ नहीं बोलो। बोलो बोलो बोलो, सुनाओ सुनाओ।
2: न तो लाल जी, क्या सुनाओ?
1: अरे सुनाओ,

सैनिक भाइयों सबरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत से अनुराधा पौरवाल और सुरेश वादेकर की आवाजों में। गीतकार है संतोष आनंद और संगीतकार है आनंद मेलन।

सैनिक भाइयों सबरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिमान से किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरूह और संगीतकार है एसडी बर्मन।

सबरंग कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं, बेताब फिल्म से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

इसी गीत के साथ सबरंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनी भाइयों, ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं मीडियम वेव के 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीएम फ्रीक्वेंसी के 1026 किलोहर्ट्स पर। आप हमारा कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप, AIR रेडियो ऐप पर भी सुन सकते हैं। सनी भाइयों, आइए अब शुरू करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, जो है गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौरवाल की आवाज में। गीतकार है रानी मलिक और संगीत से सजाया है सरोज नंदा ने।

0: इसी गजल के साथ तरन्नुम कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। कुछ ही देर में मिडडे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Center grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for the current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Karnal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees spanning the road, power and industrial sectors. The Prime Minister will first visit Hajira and will review ongoing industrial and infrastructure operations before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees, including major healthcare and aviation infrastructure to the nation, besides laying foundation stones for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. We have a report from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new terminal building of Namo Airport and modern Namo Hospital in Daman today, strengthening the regional air connectivity and healthcare access for the Union Territory. He will also lay the foundation stone for several landmark infrastructure projects including the iconic bridge, Daman Convention Centre and NIFT Campus. In a significant step for maritime development, Prime Minister will additionally lay the foundation stone for port projects worth 885 crore rupees for the Union Territory of Lakshadweep. These projects will develop multipurpose jetty on Kalpini and Kadmat Islands, enabling year-round berthing for large passenger and cruise vessels while supporting the local fishermen with integrated fish handling and boat repair facilities. Aparna Khun, Akashvani News, Surat.
1: The centre has granted tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and interest income arising from investments in government securities. The government has promulgated the Income Tax Amendment Ordinance 2026 in this regard. The Union Finance Ministry said this step will align the taxation on government securities with many comparable jurisdictions. The exemption will be applicable from the 1st of April this year. The ministry added that the exemption will apply to any interest or capital gains arising to foreign portfolio investors on or after 1st April in respect of investments in government securities. It said similar income tax exemption is also provided for the Bank for International Settlements for any interest or capital gains from its investments in government securities. The ministry said this will ensure stable, systematic inflow of durable, patient foreign capital and long-term investors such as pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds. The Reserve Bank of India has kept key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. Accordingly, the standing deposit facility rate remains at 5% while the marginal standing facility rate and the bank rate continue at 5.5%.
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
1: The RBI has revised its GDP growth projection for the current financial year downwards to 6.6% from the earlier estimate of 6.9%. The central bank has also raised its inflation forecast to 5.1% from 4.6%. While inflation is expected to remain within the target range, rising fuel prices and higher input costs could exert upward pressure on prices in the coming months.
3: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
1: Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% down during afternoon trade today. The Sensex lost 289 points to 74,071, while the Nifty dropped 100 points to 23,317 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading over 0.5% down, while small-cap 100 index fell 0.3% a short while ago. Union Home Minister Amit Shah today outlined a comprehensive border security vision while addressing border security force personnel at the Lankamura border outpost in Tripura. Emphasizing border security, the Home Minister said the government is determined to prevent illegal demographic changes along border areas of Tripura, West Bengal and Bihar. He informed that approval has been granted for the construction of 119 kilometers of new fencing to replace aging sections of the border fence. Mr. Shah also unveiled a smart border strategy aimed at integrating advanced technology with local civil administration to strengthen border management. A pilot project of the integrated model will be launched at 7 to 8 locations next year before wider implementation.
4: Our government is firmly committed to prevent illegal demographic changes in the border regions of Tripura, West Bengal and Bihar. To safeguard the demographic balance and strengthen border security, we have undertaken extensive border fencing measures in these areas.
1: A total of over 70,000 applications have been received through the CBSE post-result grievance redressal process from Class 12th students. This includes 7,314 applications for verification of marks and over 63,000 applications for re-evaluation. CBSE had opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers on Tuesday. Following the declaration of Class 12's results on the 13th of May, a section of students expressed dissatisfaction with marks awarded and questioned the accuracy of evaluation under the on-screen marking system OSM. The Ministry of Education initiated a review of the implementation and procurement aspects of the OSM system, including examination of vendor performance, contractual obligations and quality control mechanisms. President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards to 65 eminent personalities for the year 2026 at the second civil investiture ceremony on the 23rd of this month. Earlier last month, the President had presented Padma Awards to 66 eminent personalities at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. This year, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. BJP President Nitin Naveen has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Party State Chief K. Annamalai from the primary membership of the party. Annamalai had submitted his resignation to the BJP President recently. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Nepal's Minister for Foreign Affairs, Shishir Khanal, will be on a three-day visit to India beginning today. He is visiting India at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. During the visit, Mr. Khanal will meet Dr. Jaishankar in New Delhi. In a statement, the Foreign Ministry of Nepal said the two sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, today inaugurated 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi on the occasion of World Environment Day. The Union Minister also launched a series of environmental initiatives under the nationwide campaign Ek Ped Maa Ke Naam on the occasion. Speaking on the occasion, Mr. Yadav said, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has emerged as a global leader in environmental action.
5: As the world faces environmental challenges, India continues to make significant progress. The country has emerged as a global leader in renewable energy, ranking among the top nations in solar energy capacity, while its forest cover continues to expand. Under the leadership of Honorable Chief Minister Rekha Gupta, the government of Delhi has launched the Dhool Mukt Delhi initiative. Additionally, 19 Namo parks have been developed in Delhi. I encourage everyone to contribute to a greener and healthier future by planting a tree.
1: Speaking on the occasion, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said increasing green cover is among the most important measures for improving Delhi's air quality. She announced that the Delhi government has set a target of planting 15 lakh trees across the city during the current year. During the event, three environmental publications prepared by the Delhi government were also released, which are Working Plan for Delhi, Asola Bhatti Sanctuary Management Plan and Delhi Bird Atlas. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi extended his best wishes to everyone on World Environment Day, saying initiatives like Ek Ped Maa Ke Naam have made significant contributions towards adding nearly 1.1 lakh hectares of forest every year. In a series of posts on social media, Mr. Modi remarked that the day serves to reaffirm the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Union Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan and Prasar Bharati Chief Executive Officer Gaurav Dwivedi today planted saplings under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign at the premises of Akashwani in New Delhi. Talking to Akashwani News, Dr. Murugan appealed to citizens to take a pledge to protect the environment. He emphasized the need to save water, plant trees and protect and conserve them.
6: Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji called the nation to Maa Ka Naam Ek Ped Lagane Ke Liye. Importance of the environment, we have to save the water and we have to plant that.
1: U.S. President Donald Trump has said the United States has been in direct contact with Hezbollah as part of efforts to reduce tensions in Lebanon and the wider West Asia region. Speaking at the White House, Trump said progress has been made in discussions aimed at reducing violence in Lebanon. He made the remarks after being asked about reports that Hezbollah had rejected a U.S.-backed peace proposal. He said he had discussed the issue with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and other regional leaders. India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup hockey tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. India's Pragyananda Ramesh Babu remained in contention for the Norway Chess 2026 title after defeating world champion Gukesh Dhamaraju in round 9. The victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. center grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on three-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on Ash rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
7: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
7: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
8: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
7: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
9: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
10: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
7: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ. मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
11: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
7: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
12: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ है उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाए।
7: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
13: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
14: लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
15: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
7: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रज्योतिषपुर है। कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है मीडियम वेव के 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीएम फ्रीक्वेंसी के 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब हमारा कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप एआईआर रेडियो ऐप पर भी सुन सकते हैं। समाचार के बाद सैनिक भाइयों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। शुरू करने जा रहे हैं इस प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लव इन टोक्यो से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत से नवाजा है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कश्मीर की कली से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है SH बिहारी और संगीतकार है OP नैयर।

गीतिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरगम से। गीत में आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है मीडियम वेव के 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीएनएम फ्रीक्वेंसी के 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आप हमारा कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर ऐप, एआईआर रेडियो ऐप पर भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीते का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गहरा दाग से। गीत में आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। गीतकार है शकील बदाउनी और संगीत से सजाया है रवि ने।

अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में फिल्म मौसम से। गीतकार है गुलजार और संगीतकार है मदन मोहन।

गीतिका कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो कलियां से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार है शाहिर और संगीत से सजा है रवि ने।

सैनिक भाइयों, इसी गीत के साथ गीति का कार्यक्रम यही समाप्त होता है और हमारा आज का प्रसारण भी। कुछ ही देर बाद आकाशवाणी रेनबो का प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे। इसी के साथ मैं अस्मिता आप सभी से लेती हूं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला और बदलता रहेगा, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ जलवायु की जरूरत होती है, और वो तभी होगा जब पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। जी हाँ, आज का विषय अब तक आप समझ चुके होंगे, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इस उपलक्ष्य में आज पर्यावरण की अहम भूमिका पर चर्चा होगी। यदि आपका भी है कोई सवाल तो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आपके सवालों का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जी सी खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, PSRI हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का हम स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम में। जी स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे?
2: हाँ बिल्कुल, धन्यवाद बहुत आपका, हैप्पी टू बी हियर।
1: तो डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करें, उसके पहले श्रोताओं को ये बता दें कि वर्ष 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, जिसका आधिकारिक ग्लोबल स्लोगन है नाउ फॉर क्लाइमेट, अब जलवायु के लिए कदम उठाएं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही है कि इस समय जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसका क्या कारण है?
2: अनुराधा, ऐसा है कि जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसकी हमें ज्यादा जरूरत है, जब बल्कि एनवायरनमेंट को हमारी जरूरत नहीं है। कि जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं होता है
1: जी।
2: उसमें पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पानी होता है, पौधे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सब मिला के इको सिस्टम बनता है जिसमें जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, हर आदमी प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता है सेफ्टी के लिए
1: जी।
2: लेकिन मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक जो यूज होता है वो आखिर कहाँ जाता है? आखिर वो पानी में जाता है, आखिर वो हवा में जाता है। दिल्ली में एक शोध हुआ था जिसमें कि माइक्रो प्लास्टिक हवा में पाए गए थे
1: जी।
2: और जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। इसी तरह से हमारी जो एक्टिविटीज है, एक तो वायु प्रदूषण तो है ही है, जो डीजल से और पेट्रोल से और कोयले से, उससे हमारी जो एक्टिविटीज है उनकी वजह से जो हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, उस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और आपने देखा होगा कि पहले जो आपने शायद नहीं देखा, मेरी उम्र के हिसाब से जो मैं छोटा था तो सर्दियों में सर्दी होती थी, गर्मियों में गर्मी होती थी
1: जी।
2: लेकिन अब जो है वो मौसम में इतना परिवर्तन आ गया है, बहुत एक्सट्रीम हीट आती है, 47-48-50 डिग्री पे भी जा रहा है। इस वजह से जो बाढ़ का आना और साइक्लोन्स का आना, नेचुरल कैलमिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। और इसी संदर्भ में 1972 में यूनाइटेड नेशन से 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया था, जिसको कि आज हम कमेमोरेट कर रहे हैं। इसके बाद में आपके जो प्रश्न होंगे उनका मैं
1: जरूर, डॉक्टर साहब जो बातचीत है उससे तो हमारे श्रोताओं तक संदेश पहुंचेगा ही। यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, उससे भी संदेश लोगों तक पहुंचेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आज पर्यावरण दिवस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी सी खिल्लानी जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अभी जलवायु परिवर्तन की, ये किस तरह से हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए?
1: देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो बात करूं मैं
0: जी
1: वायु प्रदूषण की, जो कि मेरा रिसर्च एरिया रहा है
0: जी।
1: और आप दिल्ली में रहते हैं तो जैसे दिवाली आती है तो प्रदूषण बढ़ता है और आपका गला खराब होने लगता है, आपको आवाज हरी हो जाती है, नाक बहने लगती है, आंखें जलने लगती हैं और कभी बार स्किन में भी इरिटेशन और इचिंग होनी शुरू हो जाती है, शाम को आपको थकावट होती है, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है कई बार
0: जी।
1: तो ये तो, और हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के पास अटेंडेंस बढ़ जाती है, खांसी रात पेशेंट आते हैं और हम उनको देखते हैं तो न उनको बुखार होता है, दवाइयां देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ असर ही नहीं करते। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है क्योंकि जो वायु प्रदूषण हमारे लंग्स में जाते हैं
0: जी।
1: लेकिन इससे भी ज्यादा जो अहम है वो है हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है। जो वायु प्रदूषण जो होता है वो एक तो पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, जो आजकल सब जानते हैं। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, लेड होता है। इन सबको मिला के जो एक नंबर हम देते हैं वो कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। तो ये जो AQI जो होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि मैं एक सदस्य हूँ एक्सपर्ट कमेटी का, 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं रहती है और उसमें इंडिया तो बहुत ही आगे है। अब इसका असर ये हुआ है कि एक शिकागो की स्टडी आई थी 2 साल पहले कि भारतीयों का जो जीवन काल है वो 5.3 साल कम हो रहा है सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। वो इसलिए कि वायु प्रदूषण न सिर्फ खांसी करता है बट एक COPD बीमारी होती है, ये अस्थमा करता है, ये लंग कैंसर भी करता है, हार्ट अटैक्स भी करता है और तरह तरह के कैंसर भी करता है। तो ये सब
0: जी। तो श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं आज पर्यावरण के बारे में कि किस तरह से बहुत मुश्किल हमारे लिए हो सकती है कि अगर हम समय पर जागरूक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इस बात के। अगर पॉल्यूशन को नियंत्रण करें तो हो सकता है कि स्थितियां कुछ सुधर जाएं, क्योंकि हम आजकल ये देखते हैं कि जो लगातार हम कहीं आना जाना होता है तो गाड़ियों से जाते हैं, घर में तमाम ईंधन के साधन वो प्रयोग होते हैं, जितने भी साधन ईंधन के हो सकते हैं हम सबका समुचित उपयोग करते हैं ये समझे बिना कि अगर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और स्थितियां दिन ब दिन किस तरह से बिगड़ रही हैं ये हम सब देख पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब लगातार हमें जागरूक कर रहे हैं कि यदि हम संभल जाएंगे तो हमारी स्थिति किस तरह से बदलती जो जा रही है वो संभल सकती है, क्योंकि अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों की बीमारी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था वो कि जब अगर इंडिया की बात करें तो वायु प्रदूषण जो है ना ये मोटर व्हीकल से सबसे ज्यादा आता है
0: जी।
1: लकड़ी कोयला जलने से बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है।
0: डॉक्टर साहब, एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, कहीं ये लोगों को ये सोच नहीं बन पा रही है कि किस तरह से इस बात को समझें कि ये जो दुरुपयोग हो रहा है चीजों का ये कहीं ना कहीं हमें मुश्किल में डाल सकता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। या अगर घर में 4 जने हैं तो 4 की जगह 5 गाड़ियां भी होती है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं
0: जी।
1: कोई भी ये नहीं सोचता कि 3 जने साथ मिलके जाएं, एक ही जगह जाना हो तो सब लोग अलग अलग, और गाड़ियों का वो बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है
0: जी।
1: 40-50 साल पहले एक Maruti 800 गाड़ी होती थी, वही एक सबसे पॉपुलर कार थी, आज SUV इतनी है। और दूसरा डीजल का जो उपयोग हो रहा है उससे भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है।
0: फेफड़ों के लिए डॉक्टर साहब किस तरह से हानिकारक है कुछ विस्तार से बताएं, क्योंकि लोग समझते तो हैं लेकिन जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और आज के दिन हमारा विशेष प्रयास यही है कि समझें कि जिम्मेदारी हमारी अपनी है।
1: तो जहाँ तक फेफड़ों का प्रश्न है कि जो जैसे हम बच्चों से शुरू करते हैं, जो जैसे दिल्ली एनसीआर के जो बच्चे हैं, हर तीसरे बच्चे को आज अस्थमा है, हर जिस घर में दो बच्चे हैं अमूमन सबके पास नेबुलाइजेशन मशीन है, क्योंकि बच्चों को खांसी होती रहती है और दमा होता रहता है। और एक रिसर्च हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जिसमें देखा गया कि जो दिल्ली के जो स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के, उनके लंग फंक्शन साउथ इंडिया के बच्चों के बनिस्पत कमजोर है। तो ये दर्शाता है कि जो वायु प्रदूषण का जो इफेक्ट है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। और एक तो एस्थमा बहुत कॉमन होता है, और दूसरा एक ब्रोंकाइटिस होती है जिसको हम सीओपीडी कहते हैं, वो अंग्रेजी में कहूँ तो थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पूरी दुनिया में। तो पहले हम जब पढ़ा करते थे तो 90% ब्रोंकाइटिस स्मोकिंग की वजह से होती थी, लेकिन अब जो है 50% ब्रोंकाइटिस जो है वो वायु प्रदूषण की वजह से होती है। और एक बहुत बड़ा कारण है न सिर्फ डेथ का, लेकिन एक बार जिसको सीओपीडी हो जाती है उसका हमारे पास कोई पक्का पुख्ता इलाज नहीं होता, फिर वो आदमी खांसता ही रहता है, फिर ऑक्सीजन पे चला जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर की बात करें तो पहले हम जब पढ़ा करते थे कि 90% लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में ही पाया जाता है, लेकिन आज जो है 40% लंग कैंसर जो है वो नॉन स्मोकर में होता है, वो भी प्रदूषण की वजह से। और इस लंग जो कैंसर जो है की डेथ्स होती है, लंग कैंसर उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर वन कॉज है मॉर्टेलिटी का। तो ये लंग कैंसर, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, ये चार चीजें हैं जो वायु प्रदूषण से होती हैं। तो इसलिए हमें समझना है आज के दिन कि हमें जो एक्टिविटीज है, चाहे वो हम गाड़ियां चलाते हैं या कोयला जलाते हैं या घर में लकड़ी जलाते हैं, जब जब सर्दियां आ जाती हैं तो बाहर बैठ के कागज टायर कुछ जलाते हैं। उसके अलावा जो अनुराधा जी, जो आज दिल्ली में देखूं तो हर चौथा घर कंस्ट्रक्शन चल रही है,
0: जी जी,
1: उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, उससे भी बचाव होना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं सर क्या जानना चाहते हैं।
2: हाँ, मैं उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहा हूँ।
0: जी रघुवीर जी, बताएं क्या सवाल है आपका।
2: तो मुझे तो थोड़ा अपना ये पर्यावरण से संबंधित आपसे कुछ बात करना।
0: जरूर, आज का विषय वही है और डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: हाँ, तो मेरा थोड़ा सा सुझाव है। तो जहाँ तक ये जो स्वास्थ्य के बारे में, जो जहाँ तक ये प्लास्टिक की जो खाली बोतल हम फेंक देते हैं या मतलब, तो उसके लिए कुछ सरकार को या कुछ मेडिकल जो वो है, जो मेडिकल संस्थाएं हैं, उनको एक प्रयास ये रहना चाहिए कि जो प्लास्टिक की बोतल लाएं और उन इनाम पाएं, तो कुछ मतलब जैसे कुछ ऐसे होना चाहिए
0: जी।
2: मेरे ख्याल से
0: जी,
2: मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ।
0: जी बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और ऐसे सुझाव जरूर हमारे श्रोता सुने और अपनाएं भी, सिर्फ सुझाव ही ना दें, हम उसे अपनाएं भी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं बिल्कुल, उन्होंने अच्छा बोला। आजकल क्या हुआ है कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर प्लास्टिक बॉटल अब नहीं रखी जाती, ग्लास बॉटल में ही पानी सर्व किया जाता है। लेकिन जो अमूमन जगह पे है, सड़क पे जो बोतलें होती हैं, आप सोचें जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो जब ट्रकों में जाती होंगी तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो चलती होंगी, तो वो पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक्स चले जाते हैं उनमें। और तो ये जरूरी है कि न सिर्फ प्लास्टिक, बल्कि जो प्लास्टिक जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं, जो डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं, वो बहुत बड़ा एक कारण है। वो अल्टीमेटली पानी में जाते हैं, नदी नालों में जाते हैं, वो पानी फिर सो कॉल्ड प्यूरिफाई करके आता है, लेकिन उसमें उसके जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो रहते हैं। तो जरूरी है कि आदमी सब्जी लेने जाता है, सामान लेके जाता है, तो अपना कपड़े का बैग लेके जाए और ये प्लास्टिक की बॉटल्स यूज नहीं करे, और पॉलिथीन के जो बैग्स होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। और बहुत तरह से प्लास्टिक यूज होता है
0: जी,
1: जो कि फेंका जाता है, और हम जो डिस्पोज करते हैं वो सेग्रीगेट तो नहीं करते। आप अगर विदेशों में जाएंगे तो हर घर में तीन तरह के डब्बे होते हैं। आपको कागज अलग से फेंकना होता है, जो पेरिशेबल होता है वो अलग से फेंकना होता है, लेकिन हमारे यहाँ सब मिक्स होके जाता है और ये बहुत बड़ा। और वो क्या करता है, जैसे दिल्ली की बात करें तो भी जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है पॉल्यूशन का। और मैंने जैसे शुरू में बोला, जिन्होंने ये बात नहीं सुनी हो, कि दिल्ली की हवा में माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, कैंसर करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं, तरह तरह की बीमारियां करते हैं, वो बहुत मात्रा में पाया गया है। ये एक रिसर्च हुई थी, तो मैं रघुवीर जी के सजेशन से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और मानता हूँ कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है
0: जी।
1: ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार ही इसको इम्प्लीमेंट करे, ये हर सिटीजन का
0: दायित्व,
1: हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो प्लास्टिक को यूज ना करे, पेड़ पौधे लगाए, और अननेसेसरली सर्दियों में जो है ना लकड़ी वगैरह बाहर बैठ के जो बोन फायर करते हैं और जलाते हैं उसको ना करें। अगर आपके गार्ड हैं, वो गार्ड बेचारे जब सर्दी में बाहर बैठते हैं तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फिर वो फिर कुछ भी जलाते हैं, कागज लकड़ी जो उनको मिल जाता है
0: जी।
1: तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखें, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
0: जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, आगे की चर्चा हम जरूर करेंगे, पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा, और मेरे साथ डॉक्टर जी से खिलनानी जी हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। यदि आप भी आज के विषय से जुड़ा कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 01123421080, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं, जिनमें से पहला मैसेज मैं ले रही हूँ, ये है पूजा खन्ना जी का, सुभाष नगर दिल्ली से। लिख रही है कि दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक आम नागरिक के तौर पर हम अपने घरों को बिना एसी के ठंडा रखने और अर्बन हीट आइलैंड के असर को कम करने के लिए क्या छोटे बदलाव कर सकते हैं?
2: ये पूजा जी बहुत एप्रोप्रिएट, सही वक्त पे आपने सवाल पूछा है। पहले टेम्परेचर 43-44 तक नॉर्मली जाता था दिल्ली में, अब 46-47 पे भी जा रहा है। तो हर आदमी तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, और हर जगह एसी चल भी नहीं सकते हैं। स्कूलों में और एसी चलाना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए गर्मी से बिल्कुल बचने के लिए पहले तो गर्मी के इफेक्ट क्या होते हैं ये समझना है हेल्थ के ऊपर। जब आपको गर्मी लगेगी, एक तो गर्मी लगती है, एक वो एहसास होता है कि अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन गर्मी लगने से डेथ भी हो जाती है, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक होने से पहले आपको हीट एग्जॉशन होता है, मतलब आपको भूख लगना बंद हो जाती है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है, खाने को कुछ मन नहीं करता। ये सब होने के बाद धीरे धीरे ऐसे होता है, फिर बेहोशी आने लग जाती है, और उसके बाद कन्वर्जेंस भी आने लग जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन उससे बचने के लिए जरूरी है कि जब दोपहर का समय हो, उस समय आप बाहर जाएं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप छतरी ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय आप कपड़े रंगीन ना पहने, कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपका हीट इफेक्ट, क्योंकि जो रंगीन काले कपड़े होते हैं वो हीट को

0: बहुत एब्जॉर्ब करते हैं
1: जी।
0: उसके अलावा रेगुलरली आपको पानी पीना है। पानी का मतलब ये नहीं है कि आप आइस कोल्ड पानी सिर्फ पिए, नॉर्मल पानी जो है, हाइड्रेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा ये होता है कि जब आपको ये जो सिम्टम्स हों जो मैंने आपको बताया, उस समय आपको बिल्कुल रेस्ट करना है। और उस समय तो जरूरी होता है कि आदमी ठंडे एनवायरमेंट में, एयर कंडीशन एनवायरमेंट में ठंडे पानी से नहा ले, तो आप हीट के इफेक्ट से बच सकते हैं। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि एसी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 19 डिग्री पे जो है ना एसी चला के खूब सोचते हैं, उसका मजा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब एकदम वो जब बाहर आते हैं तो वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, अस्थमा हो जाता है, अटैक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर है वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ लिक्विड इनटेक जो है ना वो एडिक्वेट
1: होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब आपसे बहुत कुछ जानेंगे, अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
2: हेलो, मैं नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी, मैं अभिषेक बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
1: बताएं क्या सवाल है आपका।
2: मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जब ये जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स आप समझा रहे थे, तो ये जब शुरू ही होती है तो क्यों नहीं इनका बनना बंद किया जाता। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, और ये जो स्लम्स है ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो भी हमारी पोल्यूशन को बहुत बढ़ावा दे रही है। और एक मैं ये जानना चाहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि ग्रीन हाउसेस बहुत बड़ी पोल्यूशन दे रहे हैं, मेरे को ये समझना है आपसे कि ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं।
0: तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं एक एक करके जवाब देते हैं। एक दो, पहली बात, जो प्लास्टिक बॉटल बनना बंद होना चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि प्लास्टिक एक यूजफुल चीज भी होती है, किसी किसी चीज में जरूरी भी होती है, लेकिन इसका जो डिस्पोजल होता है ना,
2: हाँ जी,
0: वो इम्पोर्टेंट है। आप जैसे कभी ट्रेन में जाते होंगे तो वहाँ लिखा होता है कि अपने उसको डिस्ट्रॉय कर दें ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन करता कोई नहीं है। दूसरा ये है कि प्लास्टिक जो होता है वो उसका जो मिसयूज जो हो रहा है, जो ओवर यूज हो रहा है, हर चीज का यूटिलिटी होती है और एक मिसयूज होता है। कार का यूज होता है, आप चलाओ, जरूरी चलाओ, लेकिन उसको खामखा चलाना, या कार आपकी धुआं मार रही है फिर भी आप उसको चलाए जा रहे हैं बिना चेक कराए, वो उसका मिसयूज होता है। तो प्लास्टिक का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने पॉपुलेशन की बात करी, मैं मानता हूँ इंडिया इस समय नंबर वन पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो और जो आप कह रहे हो कि स्लम्स में ओवर क्राउडिंग होती है, डेफिनेटली उससे हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ता है, गंदगी भी बढ़ती है, लेकिन ये तो उसके लिए कोई मेरे पास कोई उसका कोई उपाय नहीं है। जो ग्रीन हाउस है वो वहां से भी गैसेस निकलती है, लेकिन एक रिलेटिव टर्म्स में वो माइनर इशू है हमारे लिए। हमारे लिए जो मेजर इशू है वो है वायु प्रदूषण, प्लास्टिक, और जो पेड़ पौधे जो कम हो रहे हैं एनवायरमेंट में, और जो जंगल काटे जा रहे हैं और उनसे लकड़ी बनती है, कागज बनती है, और जो बिजली का ओवर यूज, स्पेशली गर्मियों में हम बिजली यूज करते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि बिजली बनती कैसे है। बिजली 90% से ज्यादा कोयले से बनती है
1: जी।
0: और वो जब कोयला जलता है उससे जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वायु प्रदूषण का। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को संयम रखें, कार पूलिंग कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जब आप कुछ सामान खरीदने जाएं तो रीयूजेबल कपड़े के या जो भी बैग आपके पास है उसको लेके जाएं, प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंके, अपने कचरे को सेग्रीगेट करके दें सो दैट वो मिक्स ना हो
1: जी।
0: क्योंकि उन ये सब छोटी छोटी चीज करने से हम अपने जो दुनिया के जो बेहतरीन देश है जहाँ वायु प्रदूषण कंट्रोल में है, वो सब इन चीजों का पालन करते हैं। जैसे आप सिंगापुर की बात करें, बहुत एक्सपेंसिव है, आप कार वहाँ रख ही नहीं सकते क्योंकि उसके टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोग वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं। तो सिंगापुर की जो एयर क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है
1: जी।
0: ऐसा नहीं है कि वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन इंडिया जैसी नहीं है, पर है पॉपुलेशन, लेकिन कार बहुत कम लोगों के पास है
1: जी।
0: और कार की जो क्वालिटी है, फ्यूल क्वालिटी और इंजन क्वालिटी, उसका स्ट्रिक्ट उसका एक्शन होता है, स्ट्रिक्ट उसका पालन होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं
1: जी।
0: ये हम लोग मैनमेड प्रॉब्लम है हमारी।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और देखने को सामने आती है कि बढ़ते तापमान की वजह से त्वचा की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, ये किस वजह से है और कैसे इस पर नियंत्रण हो?
0: नहीं, त्वचा की बीमारियां स्पेशली हीट से नहीं होती है, हीट से थोड़ी उसमें बर्निंग होती है, लेकिन त्वचा की बीमारियां भी, एक तो एलर्जिक कंडीशन ज्यादा होती है उससे, और दूसरा वायु प्रदूषण से भी उसमें इचिंग होती है। लेकिन मैं डर्मेटोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन स्किन की इचिंग का कारण होता है वायु प्रदूषण, अदरवाइज इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट इफेक्ट लंग पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, हमारी जो धमनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स पे, किडनी पे, इंटेस्टाइन पे, इन पे ज्यादा होता है
1: जी। डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है नरदेव सिंह चौहान जी का, कोटद्वार उत्तराखंड से, लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एक पेड़ माता के नाम कितना उपयोगी है। दूसरा, अत्यधिक शहरीकरण प्रदूषण का मेन कारण है, व्यक्तिगत क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
0: नहीं, दोनों बातें बिल्कुल सही है। डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं जो हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारा पॉल्यूशन का। तो सब कहते हैं कि आप पेड़ लगाओ। दूसरी बात क्या बोली, सॉरी?
1: उनका ये कहना है कि शहरीकरण जो हो रहा है, हाँ, उसकी वजह से कितना नुकसान है आज?
0: शहरीकरण तो जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका तो बहुत ही, अब जैसे अब ऐसे भी शहर हैं जहाँ पीतल की इंडस्ट्री बहुत का प्रचलन है, वहाँ पीतल को गलाया जाता है और उसके सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं। तो उस शहर में न सिर्फ लंग की कंडीशन ज्यादा होती है, ट्यूबरक्लोसिस भी ज्यादा होती है
1: जी,
0: इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं। तो जो शहरीकरण है उससे ये सब जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जब गाड़ी होगी तो गाड़ी धुलने की भी सर्विस स्टेशन भी होते हैं, तो इस तरह से वर्कशॉप्स भी होती हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा एमिशन होता है। तो शहरीकरण से तो फर्क पड़ता ही है, जितना आप शहर से दूर रहेंगे
1: जी,
0: उतना आप वायु प्रदूषण से बचे रहेंगे। मतलब अगर आप उत्तराखंड में चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, पिथौरागढ़ चले जाएं, तो डेफिनेटली वहाँ वायु प्रदूषण कम होता
1: है,
0: इसमें तो कुछ।
1: गांवों की जो आबो हवा है आज भी शुद्ध है, डॉक्टर साहब ऐसा कहना चाहेंगे?
0: सॉरी,
1: मैंने कहा आज भी जो गांवों की आबो हवा है वो शुद्ध है वनस्पत शहरों के?
0: गांवों की नहीं, जो जो पहाड़ी एरिया है ना, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और पेड़ ज्यादा है
1: जी,
0: गांव में तो फिर और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वहां भी जो फॉसिल फ्यूल जो कहते हैं, लकड़ी वगैरह, कोयला खूब जलता है और आपको पता ही है क्रॉप बर्निंग होती है, तो वहाँ कितना बुरा हाल होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें डेंसिटी कितनी है और वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है
1: जी।
0: लेकिन डेफिनेटली आप अगर, अब दिल्ली तो कैपिटल है एयर पॉल्यूशन का, सब जानते हैं, तो पर हर शहर दिल्ली नहीं है, कुछ शहर अच्छे भी ऐसे भी है जहाँ, जैसे इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, तो वहाँ के लोगों में बहुत जागरूकता है। वहाँ अगर आप कागज फेंकेंगे सड़क पे तो कोई आपको टोकेगा जरूर
1: जी।
0: तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको हमें पालन करना चाहिए
1: जी। पेड़ लगाएं, ये तो हम संदेश दे ही रहे हैं, साथ साथ छोटी छोटी बातें हैं श्रोताओं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब लगातार हमें जागरूक कर रहे हैं। और अब सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें पूरा पर्यावरण का जिक्र आपको मिलेगा।

0: जब ऐसे पेड़ झूमते रहेंगे तो आपका जीवन भी झूमता रहेगा, क्योंकि जरूरी इसलिए है पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा जो वायुमंडल है वो भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें। जी हाँ, आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण दिवस पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी सी खिलनानी जी। यदि आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 0112342108 और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपको बता देते हैं, नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, अब जो समस्या इस समय बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वो है नॉइस पॉल्यूशन, इसकी वजह से क्या मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं?
1: तो नॉइस पॉल्यूशन जो है ना वो भी एक समस्या है जिसको कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नॉइस पॉल्यूशन की वजह से एक तो आदमी की नींद डिस्टर्ब होती है और नींद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है वो भी ज्यादा उससे होती है, और कॉन्सेंट्रेशन आदमी की जो होती है किसी भी काम में वो भी अफेक्ट करती है। लेकिन कोई भी इसको मेजर नहीं करता, कोई भी इसका ध्यान नहीं देता
0: जी।
1: क्योंकि लाइफ में इसका लोगों को ज्ञान भी नहीं है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छा, ये भी एक पर्यावरण का हिस्सा है जो नॉइस है, एयर के अलावा, वाटर के अलावा
0: जी।
1: तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, और हमें जो एक्टिविटीज जो है ना बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, कई लोगों को शौक होता है कि अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के जो है ना गाड़ियां चलाते हैं, या कई जगह, कई शहरों में अभी भी इंडस्ट्रीज जो है ना वो शहर के बीचों बीच होती है तो उसकी बड़ी आवाजें होती है, तो वो सब और जो व्हीकल्स होती हैं उसकी आवाज तो होती ही है, तो ये नॉइस का भी जो है ना इम्पोर्टेंट है
0: जी। इस विषय पर आगे और चर्चा करेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है जी, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
2: हाँ मैडम, मैंने पहले बात किया रघुवीर जी, फिर मैं दोबारा डॉक्टर साहब से एक थोड़ा क्वेश्चन का
0: बताएं।
2: जो उसको मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से ना
0: जी।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, सवाल करें।
1: मैं सुन रहा हूँ।
2: हाँ, मैं जो वो आपने कहा कि जो ये प्लास्टिक की बोतल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, तो थोड़ा सा मैं पहाड़ में रहता हूँ, इधर उत्तराखंड का हूँ मैं, तो जैसे मतलब मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, अब जैसे मतलब ये है कि जैसे पन्नी है, जैसे ये बोतल है या प्लास्टिक के जो कोई और जैसे मतलब जो यूज नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि बरसात में नदी में बह जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में। जब ये समुद्र में जाएंगे तो जीव जो वहाँ के जो जो उसमें जीव हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। अब दूसरी बात, आपने बोला डॉक्टर साहब कि ये जो प्लास्टिक को जो कलेक्ट करने का काम या इसको, ये तो आम सब लोगों का काम है, हम सब लोगों का। अब जब मैं अपने ऊपर की बात करता हूँ कि मैं जो प्लास्टिक इकट्ठा करूंगा तो उसको जलाने से नुकसान है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ?
1: तो दो, आपने दो बातें कही, एक तो ये है कि जो जो भी चीज जैसे प्लास्टिक पानी में जाता है या पेस्टिसाइड्स पानी में जाते हैं या एक्सक्रीटा पानी में जाते हैं, एक तो पानी का प्रदूषण होता है, वही पानी कल्टिवेशन के लिए भी यूज होता है, वही पानी जो फिश होती है, जो मछली वगैरह जो है वो भी उसको यूज करती है, तो फिर आज जो लोग फिश खाते हैं तो वो प्रदूषित फिश खाते हैं। तो इसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो जरूरी है कि ये जो अभी जो यमुना और नदियां हमारी प्रदूषित हो गई है, इसका सिर्फ विजुअल वो नहीं है कि वो गंदी लगती है, उसका बहुत सारा इम्पैक्ट है, क्योंकि वही पानी पिया जाता है, चाहे वो प्यूरीफाई करते हैं लेकिन उसके प्यूरीफाई में ये सब माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह प्यूरीफाई नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसका जो है ना वो पूरा ध्यान रखना चाहिए
0: जी। बताएं डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी इन्होंने जिक्र किया, तो इन्होंने नदी का भी जिक्र किया, तो जो नदियों में पॉल्यूशन हो रहा है उसका कितना असर पड़ सकता है लोगों पर?
1: नहीं, बहुत असर पड़ता है, वही मैंने बोला जो नदियां बहती हैं उसके उसमें लोग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसको कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है वो उसका वेस्ट जो है ना वो सेव उनके लिए बहुत सस्ता होता है कि उसमें बहा देते और सब लोग उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है सब कुछ होता है यूरिन भी पास करते हैं उसमें क्या क्या नहीं करते तो ये सब जो है ना नदियों का प्रदूषण ये पानी कहाँ जाता है ये मछलियां इस्तेमाल करती हैं यही पानी कल्टीवेशन के लिए भी यूज होता है जिससे सब्जियां उगाते हैं लोग फल उगाते हैं और फिर यही पानी जो है वो सो कॉल्ड प्यूरिफाई करके वो पीने के लिए जो हमारे नलों में आता है
0: जी।
1: तो प्यूरिफिकेशन में कुछ चीजें तो साफ हो जाती है जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स हैं पेस्टिसाइड्स हैं ये पूरी साफ नहीं हो पाती हालांकि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं इन्फेक्शन फ्री हो जाते हैं पैरासाइट फ्री हो जाते हैं
0: जी।
1: तो वो हर चीज उस जो हमारे प्रेजेंट इक्विपमेंट है

0: नुकसान तो सबको होता है,
1: सबको होता है जी, क्योंकि हम कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं वो कड़ी आके वापस हमसे जुड़ जाती है।
0: ये जनरेशनल होता है
1: जी, बिल्कुल।
0: जेनेटिक चेंजेस भी आते हैं, फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ता है, फीमेल की जो आज आप देख रहे हो IVF हर जगह दुकानें खुली हुई है, नेचुरल वो ये फर्टिलिटी पे भी पर्यावरण का इफेक्ट पड़ता है
1: जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता है वो मैसेज कर रहे हैं गैंगटोक सिक्किम से, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, फिर भी ये जानना चाहते हैं कि लोगों की कम से कम 5 कुछ ऐसा बताएं जो लोगों की जिम्मेदारी बने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए।
0: ये तो रिपीटेशन होगा अनुराधा जी, जो सबसे पहली बात तो ये है कि
1: जी अगर संक्षेप में कहना चाहे इनकी बात को,
0: संक्षेप में जैसे आप स्कूटर की जगह साइकिल चलाएं या कार पूलिंग कर लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, ये सबसे एक तो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एयर पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। सब आदमी अपने घर पे जिसको सुविधा हो वो पेड़ उगाएं। तीसरी बात ये है कि आप जो है ना जो
1: सर इंडोर प्लांट्स भी कितना असर करते हैं, आजकल देखा जाता है कि किचन गार्डनिंग होती है और इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, क्या उसका भी स्वास्थ्य पर अच्छा असर होता है?
0: इंडोर प्लांट्स का जो है मिनिमल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे देखे गए हैं कि जो कि एयर को थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण बहुत ज्यादा हमारे
1: नहीं
0: पास
1: है। जी
0: हमारे पास नहीं है, तो कोई ये ना सोचे कि दो प्लांट आपने अपने लिविंग रूम में या जिसको ड्राइंग रूम में लगा दिए तो आपकी हवा स्वस्थ हो जाएगी,
1: जी ऐसा नहीं,
0: वो बिल्कुल नहीं है
1: जी।
0: उसके अलावा जो है आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो रीयूजेबल बैग जो है ना हमेशा यूज करें, और उसके अलावा जो है आप जो बाहर जो बेकार की चीजों को जला देते हैं उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी सर्दी हो तो आदमी कुछ लकड़ी वकड़ी जला के कागज जला के हाथ सेकते हैं, वो टायर भी जला देते हैं, कुछ भी वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कागज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए अपने घर में, अगर ऐसे नहीं कि बिजली का बिल ठीक है आता है लेकिन बिजली वो जैसे मैंने कहा कि तो बिजली आती कहाँ से, वो कोयले से आती है, तो इसलिए बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं 5 की जगह 10 बता सकता हूँ
1: जी, लेकिन ध्यान हमें खुद को रखना है, ये बात लगातार हम लोगों को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: जी बताएं।
2: ये पूछा था डॉक्टर साहब से कि जैसे कि पर्यावरण में जैसे कि हमें कोई ऐसे इक्विपमेंट मिलते हैं कि हम जैसे हवा की शुद्धता नाप सके, जैसे हम तो सांस ले ही रहे पर हमें क्या पता कि हवा दूषित है या प्रदूषित है।
1: जी
0: तो ठाकुर साहब, नापने के तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन अब जो हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, वो पहले जब मैंने ये रिसर्च शुरू करी थी 1991 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, तो बहुत थोड़े मॉनिटरिंग स्टेशन होते थे, कुछ ही शहरों में जो है ना जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मॉनिटरिंग होती है, PM2.5 भी बहुत कम मॉनिटर होता था, लेकिन अब तो हर शहर में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और वो वेबसाइट पे मौजूद भी होता है। जो छोटे छोटे जो मशीनें होती हैं जो कि बाजार में मिलती हैं AQI नापने की, वो इतनी रिलायबल नहीं होती है, उस पर आपको नहीं जाना चाहिए। और जो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो वेबसाइट पे या पब्लिकली जाता है वो ज्यादा रिलायबल होती है एयर पोल्यूशन मेजर करने के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आज का जो जीवन है उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, ऐसे में पर्यावरण से जुड़ाव कैसे हो और कितना लाभकारी होगा उनके लिए?
0: नहीं, सबके लिए लाभकारी होगा। जो पिछले एक घंटे में हमने जो बातें करी हैं वो बहुत अहम है। और दूसरा लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई ये ना सोच

0: कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ही ज्यादा हाईलाइट होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अगर आप पूरे भारत के मैप को देखेंगे, इवन जो जहां पर समुन्द्र है, जैसे मुंबई है जिसको कहते थे समुन्द्र की वजह से एयर पोल्यूशन, वहां भी AQI 200-300 तक पहुंचता है, और उत्तर प्रदेश की तो क्या ही बात करें। तो ये सारा कंट्री में जो वायु प्रदूषण जो नहीं भी इतना हाईलाइट होता, ये सब जगह है। तो कोई ये इम्प्रेशन ना ले कि ये दिल्ली की या नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। इसलिए सबको इसी तरफ ध्यान देना चाहिए और सबको उस तरफ कदम, जो हमने थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं, उसको ध्यान देंगे तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: जी, आपका कहना है कि हम सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए या अस्वस्थ बनाने के लिए, तो हम जागरूक होंगे तभी पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको जरूर पसंद आई होगी। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा या किस विषय पर आप रेडियो डॉक्टर में डॉक्टरों से परामर्श चाहते हैं, इसके बारे में आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। उसके लिए ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। तो बहुत सारी आज हमने चर्चा की है डॉक्टर साहब, और चलते चलते अगर कोई संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें।
0: नहीं, चलते चलते यही संदेश है कि नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है।
1: जी,
0: हमें नेचर की जरूरत है, इसलिए उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी,
0: और हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो ये ठीक रहेगी, नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि कोई और इसको ठीक करेगा तो ये नहीं हो पाएगी। धन्यवाद,
1: बहुत ही सुंदर संदेश डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जी हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, पहुंचाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर GC खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन PSRI हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष रूप से। उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों का बोध जरूर करिए, क्योंकि हम सिर्फ दोहन करते हैं प्रकृति का, लेकिन उसको हम देते कुछ नहीं है। देने का प्रयास करें, सिर्फ लेने का प्रयास ना करें, और यही वजह रहेगी कि पर्यावरण स्वस्थ रह पाएगा और हम सब स्वस्थ रह पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज आप संकल्प जरूर ले लेंगे पर्यावरण को स्वस्थ रखने का। तो अब अनुराधा को दीजिए आज का रेडियो डॉक्टर समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं। श्री मोदी आज 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। वे आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री की दर्ज की गई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। यह छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आए हैं। इस दौरान श्री खनाल विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंग रेड्डी ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में कार्य करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक

विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों की सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारत का पूल ए में 9 अंक के साथ दूसरा स्थान है। टीम ने ग्रुप चरण में मेजबान जापान के खिलाफ एकमात्र हार के बाद चीनी ताइपे पर 13-1 की शानदार जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और आरजे चेतन। और आज हम एक ऐसे विषय की खोज कर रहे हैं जो हमारे सामाजिक जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव। तो अपना पसंदीदा चाय का कप ले, एक आरामदायक जगह ढूंढे और आइए साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखें। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया ने खुद को हमारे रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में बुना है, हमें उन तरीकों से जोड़ा है जिनके बारे में हम कुछ समय पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन आइए वास्तविक बने, विस्तार से जानते हैं कि सोशल मीडिया हमें कैसे प्रभावित करता है। हमारे द्वारा की जाने वाली निरंतर तुलनाओं से लेकर सत्यपान प्राप्त करने में इसकी भूमिका तक, तो इस डिजिटल क्षेत्र और हमारे दिल और दिमाग पर इसके प्रभाव की गहरी जानकारी के लिए तैयार हो जाइए। सोशल मीडिया में वह चीज है जहां लोग अपने जीवन की सर्वोत्तम हिस्सा है, जीत, ऊंचाइयां, चमकदार क्षण प्रदर्शित करता है। और क्या ये एक हाईलाइट रील में एक झलक देखने जैसा है? समस्या ये है कि हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता की तुलना इन चित्र परिपूर्ण स्निपेट से करना आसान नहीं है। इससे पहले कि हम ये जाने, हम खुद को अच्छा न मानने और खुद पर संदेह करने के चक्र में फंस गए हैं। इस तुलना खेल को सुलझाए और देखें कि हमारे दिमाग के साथ कैसे खिलवाड़ करता है। अब दोस्तों, ये एक बहुत ही सामान्य बात है, हम हमेशा सोशल मीडिया पर दूसरों के मुकाबले अपने जीवन को आकार दे रहे हैं और ईमानदारी से कहे तो ये हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ है। लेकिन ये कोई चिंता नहीं है, हम यह केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं है, हम कुछ समाधान भी खोज रहे हैं। दोस्तों, हम निश्चित रूप से इस कंपैरिजन गेम में फंसे हुए हैं, इस गेम से हमें बाहर निकलना है। अब आपके चमकने का समय आ गया है, टाइम टू राइज एंड शाइन। हम यह जानने के लिए उत्सुक है कि इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल मीडिया रोलर स्केटर ने आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित किया है। अपने विचार और अनुभव हमें कॉल या हमें एक ईमेल भेजें। आपके शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं जो ऐसे ही महसूस कर रहा है, तो आइए मिलकर इस डिजिटल भूल भुलैये से पार पाए। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट।

feedbackamc1@gmail.com। अब माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा गियर बदलते हुए आइए वास्तव में सोशल मीडिया पर संपूर्ण सत्यापन दृश्य को समझें। क्या आप जानते हैं लाइक, कमेंट और शेयर की लगातार तलाश यह पीठ पर बाहरी थपथपाहट जैसे है जैसे हम सभी चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में कठिन क्षण है। क्या होता है जब उन पसंदों की आपूर्ति कम हो जाती है या जब बहुत ही अच्छी नई टिप्पणियां सकारात्मक टिप्पणियों से अधिक होने लगती है। खैर, सावधान रहे क्योंकि हमारे आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति पर इसका असर काफी गहरा हो सकता है। आइए इस सत्यापन पहेली को खोलें और देखें कि ये हमारे मानसिक कल्याण की बड़ी तस्वीर में कैसी भूमिका निभाती है। दोस्तों, ये स्वाभाविक है, मान्यता की चाहत पूरी तरह से मानवीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात है, उस गर्म धुंधले एहसास के लिए केवल बाहरी श्रोताओं पर निर्भर न रहना अति महत्वपूर्ण है। हम सोशल मीडिया के साथ एक स्वस्थ माहौल बनाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर से उस मान्यता को कैसे प्राप्त करें, ये एक मजबूती नींव तैयार करने जैसे है। दोस्तों, यहाँ सोचने के लिए पहेली का एक और टुकड़ा है। सोशल मीडिया सामग्री की सावधानी पूर्वक बनाई गई दुनिया, वहाँ बहुत से लोग डिजिटल कलाकारों की तरह हैं, जो अपने जीवन के लगभग पूर्ण संस्करण को प्रस्तुत करने के लिए अपने पोस्ट को सावधानी पूर्वक चुनते हैं और फिल्टर करते हैं। ऐसे लगता है मानो वो इस आदर्श चित्र को चित्रित कर रहे हैं। शिकार, ये पॉलिश की गई वास्तविकता हमारे दिमाग में गड़बड़ कर सकती है। जो सामान्य या प्राप्त करने योग्य मानी जाती है उसके बारे में एक प्रकार की विकृत दृष्टिकोण बन सकती है। ये एक डोमिनोस इफेक्ट की तरह है। ये अवास्तविक उम्मीद सेटिंग गेम वास्तव में हमारे मानसिक कल्याण में बाउंसर फेंक सकता है। आइए इस निर्मित वास्तविकता को उजागर करें और देखें कि ये दुनिया के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। फ्रेंड्स, आइए गियर चेंज करें और गेम चेंजिंग रणनीतियों पर जूम करें। हम यह बताने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के साथ अपने रिश्ते में चीजों को कैसे सकारात्मक और संतुलित रखा जा सकता है। तो यह कुछ व्यावहारिक सुझाव आपके लिए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करें, सीमाएं निर्धारित करना। ये डिजिटल रेत में एक रेखा खींचने जैसा है। अपने सोशल मीडिया रोमांच के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें और अपने घर के कुछ तकनीकी मुक्त क्षेत्र घोषित करके एक गेम प्लान बनाएं। जब आप जानबूझकर यह स्थान और समय बनाते हैं तो यह आपके सोशल मीडिया के उपयोग पर लगभग वापस लाने जैसा है। इस तरह आप 24/7 इसकी दया पर निर्भर नहीं है और ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को नियंत्रण में रखने के लिए चमत्कार कर सकता है। आइए अपने डिजिटल जीवन को संतुलित करने की कला में महारत हासिल करें। तो दोस्तों, यहाँ एक विचार है, क्या आपने कभी अपनी सोशल मीडिया की आदत को थोड़ी राहत देना, विराम देने पर विचार किया, इसके बारे में सोचा? एक साप्ताहिक सोशल मीडिया डिटॉक्स दिवस और एक क्षण के लिए अंतहीन स्क्रोल पर विराम जैसे, जो आपको यहाँ और अभी में पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति देता है। दैट मीन्स यू विल बी हियर एंड नाउ इन द मोमेंट। ये रणनीति अद्भुत काम करती है। डिजिटल चर्चा से अलग होने के लिए एक दिन समर्पित करना एक मानसिक रीसेट बटन की तरह हो सकता है। ये आपके लिए मानसिक ताजगी का टिकट है और स्क्रीन से परे की दुनिया का आनंद लेने का मौका है। तो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए डिजिटल डिटॉक्स के अपने स्वयं के दिन को निर्धारित करने के बारे में क्या ख्याल है? चीजों को संतुलित रखने की ये एक शानदार रणनीति है। एंड माय डियर फ्रेंड्स,
मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ध्यान में रखें, सोशल मीडिया एक उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह इसका प्रभाव भी हमारे हाथों में है, चाहे वो उन महत्वपूर्ण सीमाओं को निर्धारित

खरीद करना हो, एक सकारात्मक ऑनलाइन आश्रय बनना हो या उन वास्तविक दुनिया कनेक्शन का निर्माण करना हो, हमारे पास लचीलेपन और भलाई के साथ इस डिजिटल जंगल को नेविगेट करने के लिए उपकरण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं अल्फा जेन FM रेनबो 102.6 पर। अभी आपने हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे सुना और अब बारी है मेरी यानी ज्योतिका की, और हम सुनेंगे आज क्या। अरे आज हम बात करेंगे अल्फा जेन की, क्योंकि आज का क्या डे है आप मुझे बताएंगे? 5th of June, लेकिन डे क्या है? ऑफ कोर्स इट्स अ फ्राइडे। बस नाम सुनते ही मूड थोड़ा चेंज सा नहीं हो जाता? चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो या फ्रीलांसर हो या फिर आपका खुद का कोई काम हो, फ्राइडे का एक अलग ही वाइब होता है। मंडे को हम गोल्स बनाते हैं, ट्यूसडे को उन्हें चेज करते हैं, वेडनेसडे को मोटिवेशन ढूंढते हैं, थर्सडे को तो काउंट डाउन शुरू हो जाता है, और फिर फाइनली आता है फ्राइडे, वो दिन जो कहता है यू मेड इट थ्रू द वीक। तो आज अल्फा जेन में बात करेंगे इसी फ्राइडे फीलिंग की, क्यों हम फ्राइडे को इतना सेलिब्रेट करते हैं और कैसे एक अच्छा फ्राइडे पूरे वीकेंड का मूड सेट कर देता है। स्टे हियर विद मी राइट हियर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन विद मी ज्योतिका। फ्राइडे का सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या होता है? मेरे हिसाब से ये फीलिंग कि यस आई मेड इट। हो सकता है इस वीक एग्जैक्टली वैसा ना गया हो जैसा आपने प्लान किया हो, हो सकता है कुछ डेडलाइंस मिस हो गई हो, कुछ टारगेट्स पूरे ना हुए हो या कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ गए हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ हैं। कई बार हम अपनी अचीवमेंट्स को तभी सेलिब्रेट करते हैं जब कुछ बहुत बड़ा हो, प्रमोशन मिल जाए या जैसे कहें एग्जाम क्लियर हो जाए या कोई मेजर माइलस्टोन अचीव हो जाए। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज अक्सर छोटी होती हैं। सुबह उठकर फिर से कोशिश करना, एक डिफिकल्ट डे के बाद फिर से पॉजिटिव रहना और हार मानने के बजाय आगे बढ़ते रहना। फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हर सक्सेसफुल जर्नी एक सक्सेसफुल वीक से ही शुरू होती है। क्योंकि आज है फ्राइडे, से वंस अगेन विद मी, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे।

राइडे फील के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। आप सुन रहे हैं अल्फा जन विद मी ज्योतिका, ओनली ऑन एफएम रेनबो। देखो, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसका हम पूरे वीक इंतजार करते हैं। किसी को फ्राइडे नाइट मूवी का इंतजार होता है, किसी को वीकेंड की वो आरामदायक नींद का, किसी को घर जाने का, और किसी को तो बस इस बात का कि दो दिन अलार्म नहीं लगाया। लेकिन यहां एक और लेसन छुपा हुआ है। लाइफ में एक्साइटमेंट सिर्फ बड़े ओकेजन से थोड़ी होती है। कभी एक कॉफी डेट, एक क्रिकेट का मैच, एक फैमिली डिनर या एक छोटा सा आउटिंग प्लान भी हमें पूरा वीक मोटिवेटेड रख सकता है। इसीलिए लाइफ जितनी बिजी हो जाए, आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो, उसके बीच हमेशा कुछ ऐसा रखिए जिसका आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि एंटिसिपेशन भी हैप्पीनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और फ्राइडे उस एंटिसिपेशन का सेलिब्रेशन है।

आज की जनरेशन का एक फनी कॉन्ट्रडिक्शन है। हम सब सेल्फ केयर के बारे में इतनी बातें करते हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी उसमें अपनाते ही नहीं है, है ना? क्योंकि जब खुद ब्रेक लेने की बारी होती है तो गिल्ट फील करने लगते हैं। अगर हम 2 घंटे सीरीज देख लें तो लगता है प्रोडक्टिव नहीं थे। अगर थोड़ा ज्यादा सो जाएं, रेस्ट कर लें तो लगता है उफ ये तो टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन सोचिए अगर आप पूरे हफ्ते कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे और कभी रिचार्ज ही नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी? रेस्ट करना वीकनेस नहीं होती है, रेस्ट एक स्ट्रेटजी है। बेस्ट एथलेटिक्स भी रेस्ट करते हैं, बेस्ट परफॉर्मर्स भी रेस्ट करते हैं, और पता है क्या, बेस्ट आइडियाज भी अक्सर तब आते हैं जब हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। तो इस फ्राइडे खुद को परमिशन दीजिए थोड़ा सा पॉज करने की, थोड़ा सा ब्रीद करने की और थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करने की।

पूरे वीक हम इतने सारे रोल्स निभाते हैं, स्टूडेंट या आप एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, पेरेंट, फ्रेंड, टीम मेंबर, है ना, थक नहीं जाते हो आप? अरे आज फ्राइडे है तो मैं आज इसीलिए ये सारी बातें कर रही हूँ ताकि आपको ये रियलाइज हो सके कि स्ट्रेस के आगे भी तो अपनी जिंदगी है। इन सब रोल्स के बीच कभी कभी हम खुद को ही भूल जाते हैं। फ्राइडे और वीकेंड एक रिमाइंडर है कि आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते मत रहो, थोड़ा सा खुद के लिए भी समय निकालो, आपकी अपनी इंटरेस्ट के लिए, अपनी हॉबीज के लिए, अपने सपनों के लिए। कब आपने आखिरी बार कुछ ऐसा किया जो सिर्फ आपको खुशी देता हो? सोचो, कभी पेंटिंग की हो अपने लिए, राइटिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, या यूं ही सिर्फ एक लंबी वॉक पर निकल गए हो। कभी कभी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा जरूरी होता है क्रिएटिविटी, और वीकेंड उस क्रिएटिविटी को फिर से जगाने का मौका है। सो प्लीज, अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने का, सो द राइट टाइम इज राइट नाउ।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है।

0: साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल एड ब्रेक। मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं क्या अल्फा जैन। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फ्राइडे की, क्योंकि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, फ्राइडे शाम का एक और परमानेंट कैरेक्टर होता है और वो होते हैं दोस्त, फ्रेंड्स। चाहे स्कूल के दोस्त हों, कॉलेज या ऑफिस के, एक सिंपल सा मैसेज, क्या प्लान है, और पूरे दिन की थकान आधी हो जाती है। दोस्ती की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं होती है ना। दोस्त हमेशा आपको इम्परफेक्टली अपना लेते हैं। आप हफ्तों तक बात ना करें, फिर भी कनेक्शन वही रहता है। और जब लाइफ बहुत सीरियस लगने लगे तो दोस्त ही होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा हंसना भी जरूरी है। इस वीकेंड अगर पॉसिबल हो तो दोस्त, प्लीज अपने दोस्त को कॉल कीजिए ना, थोड़ा हैंग आउट कीजिए ना। हो सकता है उन्हें भी बस आपके उस कॉल की जरूरत हो।

कि दिल सच्ची में चाहता है कि हर बार हम अपने दोस्तों के साथ यूं ही मिलते रहें, और खासकर अपने जो स्कूल के दोस्त होते हैं, कॉलेज के दोस्त होते हैं, उनकी तो बात ही कुछ अलग होती है। जितनी लंबी यारी उतना प्यारा दोस्ताना। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन और मैं हूं ज्योतिका। अब हम वीकेंड की बात कर रहे हैं, फ्राइडे की बात कर रहे हैं, बिकॉज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। थोड़ा सा एक डिफरेंट थॉट आपके साथ शेयर करूं। हम सब फ्राइडे का वेट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कहीं हम पूरी जिंदगी वीकेंड का वेट करते करते ही तो नहीं गुजार देंगे। मतलब मंडे से थर्सडे तक बस सरवाइव करना है जैसे तैसे, और फ्राइडे को आहा फिर जिएंगे। लेकिन शायद बैलेंस थोड़ा उल्टा नहीं होना चाहिए। मतलब वीकेंड स्पेशल है, लेकिन लाइफ उसके बीच के 5 दिनों में भी तो है। हर दिन में कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको जेन्युइनली खुशी दे। फिर आपका फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, एक अच्छी चाय, एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, एक प्यारा सा सनसेट, या फिर एक जबरदस्त वर्कआउट। खुशी को सिर्फ सैटरडे और संडे तक लिमिट मत कीजिए। ये लाइफ है जनाब, रोज जिया कीजिए।

दोस्तों, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के अल्फा जेन से मुझे दीजिए इजाजत। आज हमने फ्राइडे के बाद ऑफ कोर्स फ्राइडे के बारे में बात करी है, लेकिन शायद असल में हमने जिंदगी के बैलेंस के बारे में बात की है। काम जरूरी है, गोल्स जरूरी हैं, एम्बिशंस भी उतने ही जरूरी हैं, लेकिन पता है क्या, उन सब के साथ साथ जरूरी है खुद के लिए वक्त निकालना, अपने लोगों के साथ वक्त बिताना और उन छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना जो रोज हमारे आसपास होती हैं। तो इस वीकेंड एक काम जरूर कीजिएगा, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको जेन्युइनली खुश करे, कुछ ऐसा जो मंडे तक आपको फ्रेश और इंस्पायर्ड महसूस कराए। मैं हूं ज्योतिका, आप सुन रहे थे अल्फा जेन एफएम रेनबो पर। मिलेंगे वेरी वेरी सून, तब तक के लिए थैंक गॉड इट्स फ्राइडे एंड टेक केयर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत 0.25%।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो बदा अने आपलू सूरत मजा मा ने तू शू लई आयो जो भाई धन्यवाद दोस्त सरस मजानु चित्र बनायू देते हैं। जरा एसपी जना लोको आ भाई के भेट आपवा मांगे छे।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: কাহিনী পড়ি আপনি নিশ্চয় ভাল পায়, উপন্যাস বা গল্পর প্রতি আপনার নিশ্চয় আগ্রহ আছে। বিবিধ ভারতী গুৱাহাটীয়ে আপনার বাবে লৈ আহিছে উপন্যাস পাঠর এটি মনোরম অনুষ্ঠান। প্রতি পুৱা 9 বজাত এতিয়াৰ পৰা শুনিবলৈ পাব ধারাবাহিক উপন্যাস পাঠর অনুষ্ঠান। ধারাবাহিক উপন্যাস পাঠ বিবিধ ভারতী গুৱাহাটীত প্রতি পুৱা 9 বজাত FM এণ্ডৰ 100.8 মেগাহার্জ।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
2: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
3: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
3: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
2: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व

0: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि यह खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबनन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today. Addressing a public gathering on the occasion, Prime Minister Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy.
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Prime Minister is scheduled to visit Daman later today to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees. These projects include major healthcare and aviation infrastructure. He will also lay foundation stone for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. India's economy has maintained strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% as compared to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. Prime Minister Narendra Modi has said that it reflects the inherent strength of Indian economy, the success of reforms and the hard work of 140 crore Indians. In a social media post, Mr. Modi said, "Government will leave no stone unturned to further ease of living, ease of doing business and increase opportunities for the youth." Union Home Minister Amit Shah has said, Prime Minister Narendra Modi is working with the goal of building a developed India by 2047. Addressing the Prahari Sammelan at the Lankamura border outpost along the India-Bangladesh international border in Tripura today, the Home Minister emphasized that making the nation safe and secure is absolutely essential before achieving complete development. He highlighted that it is equally crucial to keep the youth away from drug abuse and to thwart all attempts to damage the national economy through fake currency. Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today announced that natural gas has been discovered at the Sri Vijayapuram 3 about 15 kilometers off the east coast of the Andaman Islands. In a social media post, Mr. Puri said the discovery reinforces the vast energy potential of the Andaman Sea and marks another success in the ongoing exploration campaign in the basin. Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal arrived in New Delhi today on a three-day visit to India. He is visiting India at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Ranjit Jaiswal said that Dr. Jaishankar will hold talks with his Nepalese counterpart tomorrow.
3: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
2: India today lodged a strong protest with Pakistan regarding the neighboring country's plans to hold general elections to the so-called Gilgit-Baltistan Assembly in the Indian territories illegally and forcibly occupied by Pakistan. The elections are scheduled for 7th of this month. In hockey, India has defeated Pakistan 5-3 in the semi-final of the men's Under-18 Asia Cup 2026 in Kakamigara, Japan today to set up a title clash against host Japan. In a high-scoring contest, India held its nerve against its arch rival to seal its place in the final. And that is the end of this news bulletin.

0: फाइनेंस।
1: आप देखें, किसी भी एंटरप्राइज के लिए सबसे क्रिटिकल जो पेन पॉइंट रहा है वो रहा है एक्सेस टू फाइनेंस, बिकॉज दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू स्केल अप और इन्वेस्ट बिकॉज दे डिंट हैव इजी एक्सेस टू क्रेडिट एज वेल एज टू इक्विटी। सो प्रोबेबली दैट हैज बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू सम गुड पॉजिटिव पॉलिसी इंटरवेंशंस। एक क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी थी फॉर पर्टिकुलरली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड उसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 14 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है ताकि एंटरप्राइजेस आगे बढ़ करके आ सकें, और पिछले 3 सालों के अंदर इसमें 10 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी, 14 लाख में से 10 लाख करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी है पिछले 3 ही सालों में दी गई है। इससे भी एक सपोर्ट मिली इनको एक्सेस करने के लिए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इक्विटी में भी इन्फ्यूजन करने के लिए सपोर्ट प्रदान करी है। पहले भी एक फंड सेटअप किया था गवर्नमेंट ने पूंजी निवेश करने का ऐसे एंटरप्राइजेस में जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, और इस बजट में भी एक एसएमई ग्रोथ फंड और एक टॉप अप फंड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से कुछ और प्रयास किए हैं। तो एक्सेस आज के समय में आसान हो गया एंटरप्राइजेस के लिए। जो सबसे बड़ी चुनौती गिनी जाती थी वो उसका एक समाधान निकला है इन इंटरवेंशन के माध्यम से।
2: अगर हम समाधान की बात करें तो ये भी देखा गया है कि जो इक्विटी पार्टिसिपेशन आईपीओ के थ्रू भी हो पा रहा है, और यू हैव द निफ्टी वेयर यू हैव एंटरप्रेन्योर्स, दोस स्टार्टअप वेंचर्स आर एबल टू एक्सेस इक्विटी फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। अलोंग विद दैट, बैंकिंग का क्या रोल रहा है स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टार्टअप एंटरप्राइजेस?
1: देखिए, बैंक्स का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है पर्टिकुलरली फॉर एडवांसमेंट ऑफ क्रेडिट। बैंक्स आर जनरली इंसिस्टेंट ऑन कोलैटरल्स व्हेनेवर समबडी सीक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक। So banks normally are cautious that it should not become a non-performing asset tomorrow. The money should not be wasted away. So that is the reason why they exercise due diligence to make sure that they are loaning it to the right party and for a right project. So they usually insist on taking a collateral also. Now these micro and small enterprises in particular normally do not have collaterals to provide to the banks. So that is where when the government steps in to provide credit guarantee, it wins the confidence of the banker also. Plus, it is a huge support to that enterprise when he has a viable project in hand and is not able to provide the collateral. It's a support to him. Plus, I think even for those institutions who are operating the ecosystem, for them, it generates confidence because the government is backing it. So this has made a significant and transformational impact, I would say.
2: A business requires human resources. You need skilled labor. You also require top management, middle level management who know what they are doing with skilled labor itself. How do you see Skill India playing a very important role across sectors where the opportunity has now come for labor intensive industries with businesses weaning away from China and now to South Asia?
1: You know, as we have moved from having labor intensive industries like textiles, auto, electronics, towards those sectors which are the new technology sectors, like electric vehicles, for example, robotics, we have use of automation in almost all sectors, health, advanced healthcare. So in these sectors, there is a different kind of skill set that is required from the young generation. And that is where Skill India has been a very important critical enabler. And besides Skill India, there are skill development schemes and programs which are being operated by various other ministries of the government. And government has made a conscious effort to ensure convergence among all these schemes. So in fact, even Ministry of MSME has a very important role to play in developing skills, particularly industry-grade training. And we have technology centers located pan-India, which are running these courses from 6 weeks to 6 months, sometimes even for a year. And they provide industry-grade training to the young generation. It offers them good opportunities of placement also thereafter.
2: ने भी देखा है कि काफी परिवर्तन आया है इन द लॉ व्हेन इट डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज। इफ यू लुक एट वेयर द वर्कर्स आर वर्किंग, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, द न्यू इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोड, कोड ऑन वेजेस फॉर इंस्टेंस, यू हैव रिविजन ऑफ द मिनिमम रेट फॉर इंस्टेंस, सो दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज अप एंड द एंटरप्राइज इज पेइंग फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉई कंसर्न। सो हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स ऑल्सो मोटिवेटिंग द लेबर to not only upgrade themselves, but also to provide value for the services.
1: You know, here again, I feel that this was a much awaited reform, which has come in the form of the new labor codes. We had multiplicity of labor laws in India, which were neither serving the purpose of labor welfare, nor were they very favorable for industry to expand and to operate. They were

0: ভজন অনুষ্ঠানটি শুনিলে এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতেই অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9 নিউজ@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1

0: ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए। शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister